0: हीना चाका है श्मा चुना लूंडी शहाड़ी जैसी है श्मा हीना चाका है श्मा है श्मा
1: ग्लोबल रनिंग प्रोग्राम स्कूल या ब्रोंको
2: pen to paper put the pen to paper start the fighting and just do the right thing and get pen to paper pen to paper I got entertainer.